तीर्थ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहु कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लेखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जान, रुत माहु ना कोई। जा करता सिरठी कौ साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखे, इक दू इक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जे को आप जाने, अग्गे गया ना सो है। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात।

काए, धर्म खंड काए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पानी वै संतर, किते कान महीस, किते ब्रह्मे घाट घड़िय है रूप रंग की वीस, केती आ कर्म भूमि मेर किते, किते धूप देस, किते इंद चंद सूर किते, किते मंडल देस, किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते, किते देवी वेस, किते देवदान मन किते, किते रतन समुंद, कितिया खाणी कितिया बाणी, किते पात नरिंद, कितिया सुरती सेवक किते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड

ताके रूप न कथने जाहि नाउ हि मरहै न ठागी जाहि जिनके राम वसै मन माहि तिथे भगत वसह के लो करह आनंद।

है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदान्ये, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति बेभूते कलंकं बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र।

अमंग समस्त पराजी समस्त अस्तमंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं देश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्ये नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सदंग निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरखा पार सर्वमान्तर मान देव पेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदि असेख देश और न पेस जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेलन

तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जक मानई प्रतीन लोक चौदह की बिख्या जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचो स्वयं पवगण पंजन हार कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन याद रूप आद रूप असूत अंग हीन भंगा नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपीख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रीख परम वेद पुराण जा कह नीत पाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आव ही बहु चित मद पार छंद त्वे प्रसाद गुण घन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक काल अन काल अनपूत अंग आबा अपंग गत मित अपार गुण गन उदार मुन गन प्रणाम निरपै निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंक रियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र भरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिसय अधिसय अदृश्य अकृसय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया छज दिसय किया पिज पिसय किया गंज कर्मय किया पंज परमय किया पिज लुकय किया दित सुकय के अवधूत बरने के विभूत करने की राजंग प्रवाह है कि तरमंग तुझा है कि अशोक बरने के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आदि अधीव है कि आप अपीव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रुजी रजा के रही मैं रिहा के कि पाक वैब है कि गैबल गैब है कि अफूल गुनाह है कि साहान साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र धान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिस है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पहाहु के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र मान है सदैवंग प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलुंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुगत सुदा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भाग्य सुसर्वा अनुराग्य त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अशूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवंग सदा है
विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रवाह है, अनुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंगहर्ता, सर्वंगकर्ता, सर्वंगप्राणं, सर्वंगत्राणं, सर्वंगकर्मं, सर्वंगधर्मं, सर्वंगजुगता, सर्वंगमुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामेन्द्र भंगी त्रकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी दिहंद है कि राज कर हिंद है करी मुल्क माल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय कर हीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदीसुल अलीख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंगा नंग है कि अमितो अपंग है मद पहार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अर भर अगंज हर नर परपंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस बिस अपंड जल थल महंत दिस बिस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर भर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजना बात अनझंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अद ढीठ कर्म अनभ्रण अनंत दाता महंत हर भूल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारन है सर्व उबारन है त्रित के तरन है जग के करन है मनमान्य है जगजान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है विशुंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है निर्नायक है खलकायक है विशुंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंग कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक भंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अछरी छंद
अजय अलै अपै अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाश।

ना रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजुल अनामे समस्तल निवासी नरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पवसुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकाल।

रहे। हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन के हिजय भाद्रव सदी अष्टमी रविवार तीर स्तुद्रव ग्रंथ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां। हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के शकिया।

थोड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु चा प्रख्यों कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलाय सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम है विचार है, जिन सच्चे सोच चलाया।

और जित से वे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए, जित की ता पाइए अपना साहब बकाल बुरी क्यों कालिए, मंदा मुल्ला की चई दे लंबी नजर निहालिए, ज्यों साहेब नाल ना हारिए ते वे हपासा टालिए के चला है।

0: रब ने हमेशा राखी भगतां दी करी है,
1: आखदा भमदी गल सोला आने खरी है।
0: रब ने हमेशा राखी भगतां दी करी है,
1: आखदा भमदी गल सोला आने खरी है।

जाके सतगुरु नु पहना दो, ए कड़िया दी जोड़ी जाके सतगुरु नु पहना दो, प्यार बेटा ए मेरी दसवें सतगुर कोल पचा दो, प्यार बेटा ए मेरी दसवें सत

ए तो छुपे ढाकल की तर दे चरना विच चढ़ा दो प्यार पेटाए मेरी दसवें सतगुर कोल पचा दो प्यार पेटाए मेरी दसवें सतगुर कोल पचा

बिनाओ कराओ गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मोकाओ राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भाग हीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह उदम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगै कर धरिया। मेरे मादाव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय ना किस की धरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। उडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सी

एक पढ़ बहु सिमृत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तव भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हाव पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल

मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हाओ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किता ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै, रहाओ

वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मानेओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जानेओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सत गुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया सबदोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनहु संतहु शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया

0: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।
1: तुद्यागी अरदास जियो पिंडा साब, कौ नानक साब कोई नौ ना जान। मेरा एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरौ श्री हर आए। श्री हर किशन ते आइया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दे आवै ताई, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हथियां जपियां तपियां। चनाहा नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तनाहा प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। चिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़ियारियां ना चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां, सवासां संग निभाही। तनहा दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी कौ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चिते आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत। देग तेग फतेह ब्रद की पै पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान। दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे मुंगे जुग हो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। तन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नीताणियां दे तान नीओटियां दी ओट। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास। आप जी दी हजूरी अंदर संध्या वेले दे दीवान सजे। सोदा रहरा साहिब बाणी दे पाठ अमृत गुरबाणी दे पाठ करदे आ सेवा करदे आ। बेअंत भुल्लां बख्श देना आईयां संगतां दीयां हाजरियां प्रवान करनियां, भेटावां प्रवान करनियां। अमृत गुरबाणी दा भाव संगतां दे हिरदे वसाउणा, दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने। परिवारां विच परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात। गुर सिखी जीवन बख्शना खालसा पंथ दी सदा चढ़दी कला करनी। एकता ते इतफाक दी दात बख्शनी, हुक्मनामे दी दात बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो अते संध्या वेले दे दीवान आरंभ करन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਵਾਮੀ, ਬਿਨਾਉ ਸੁਣਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀਆੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦੇਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਆੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ,

कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ, रख रख चरण धरे विचारी, दुबिधा छोड़ भये निरंकारी।